सरस्वती नमस्तुभ्य वरिणी कामरूपिणी विद्यानं वंकरिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्री परमात्मने नमः। एक गणपति का संबेते गौरी माता की उन्होंने का प्रार्थना करने देखो सर्वदेव का अश्वार की ने देखो के धन्य हो धन्य हो।

आचमन्यम समर्पयामि. वी फाइंड द स्मोक इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओम वनस्पतिर सुरभूतो गंडार्यो गणदूतमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रहीताम्. वी ऑल स्ट्रेच अवर हैंड्स. ओम अनलाय नमः. ओम अनलाय नमः. ओम अनलाय नमः. वी जॉइन इन दिस ब्यूटीफुल गुरु भजन एज ग्लेन मेक्स हिज वे टू द ऑल्टर. रवि मेक्स द प्रिपरेशन क्विकली.

बोलो बोलो गजानन स्वामी की जय. बेल लीव्स सिंबलिक ऑफ अवर प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर. थ्रू दीज लीव्स वी फॉर लाइज एट आई फीट ओ लॉर्ड गणेश बी ग्रेशियस ऑन अस इन रिटर्न. शंभु महादेवा शिव शंभु महादेवा. सिंग विथ मी, लेट अस ऑल सिंग विथ फेथ विथ लव एंड विथ डिवोशन.

काशी वासी शिवासिनी काल भैरव पूजाटम कोटि कन्या महादानम बेलपत्र शिवार्पणम वन बाय वन वी ऑफर दीज बेल लीव्स चैंट विद मी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वी नाउ प्रिपेयर टू ऑफर नीम लीव्स सेंट्रल लीव्स अस इन ए ब्यूटीफुल चैंट दुर्गा भवानी मां सैलुटेशंस ऑन थ्री ओ डिवाइन गॉडेस बी प्लीज विद अस